हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ऐं तुर्किया जे सदर रजब तैयब एर्दोगान गॾिजी जुमे जी निमाज़ बि अदा कई। इन खां अॻु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार ऐं ॿियनि उमिरो अदा करण सां गॾु काबतुल्लाह अंदर में नफ़ल अदा करे ज़ियारत पिण कई।
1: इस्लामाबाद जी हुकूमत खतरे में आहे, उन्हनि जी उबती गणप शुरू थी चुकी आहे। इहा ॻाल्हि असां न पिया करियूं, पर वॾा वॾा माण्हू बि चवनि पिया त हुकूमत वञण वारी आहे। वज़ीर आज़म जे चौधारी वेठल माण्हुनि जी नियत साफ़ न आहे। नून लीग जो हिकु हिसो वज़ीर आज़म खे रुगो मुखालिफ़ धुर न पर इताद सां बि विढ़ाइण चाहे थो। हीअ सुल जहिड़ो लाहौर ऐं इस्लामाबाद विच में आहे। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े बाग में चूंड जलसे जे ख़िताब दौरान नून लीग ते तनक़ीदी वार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त आज़ाद कश्मीर में मरहले वार चूंडूं इन लाइ करायूं वयूं त जीअं दांदली करे सघिजे। कंहिं दांदली स्टेल इलेक्शन क़बूल न आहे। नून लीग वारा इन भुल में न रहनि त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहे वठंदा। इहे न सच कमीशन जोड़ण लाइ तयार आहिनि ऐं न वरी शफ़ाफ़ चूंडूं पिया कराइनि। कश्मीर हिकु आहे त चूंडूं बि हिकु ई ॾींहुं थियण घुर्जनि हा।
0: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पी पी नवनि सूबनि बाबति आवाम जी राय खे अहमियत ॾींदी। नवां सूबा ठाहिण आवाम जो फ़ैसिलो आहे त हू गॾु आहिनि। आवाम जो न आहे त हुन जी मुखालफ़त कबी। आवाम जे ख़िलाफ़ थींदड़ को बि फ़ैसिलो हरगिज़ क़बूल न आहे। बाग में चूंड जलसे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त मुल्क में केतिरा ई भेरा आइन टोड़ियो वियो आहे। हाणे चवनि था निज़ाम तबाह थी वियो आहे। निज़ाम नाकाम न आहे पर हुनखे नाकाम बणायो वियो आहे। आवाम जी हाकिमियत तस्लीम करण ताईं सिस्टम न हली सघंदो।
1: नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज़ लीग 24 सीटुनि ते कामयाब थी चुको आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े में हवेली में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउल्लाह चयो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ी जो दौर शुरू थींदो। नून लीग वधीक कामयाबी माणींदी।

0: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS, नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187।
1: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
2: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी
1: It's 10 a.m. This transact is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge kids.
4: Rat.
5: Sona lad. Mitti jo ma.
6: बे पासेबल हुयूं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मके दिफ़ाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त मुआहिदे तहत टिनी मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा मुआहिदे

वज़ीर-ए-आज़म पारां मके गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदो टिन भाइर इस्लामी मुल्कनि विच में दोस्ती अमन तवात फील्ड मार्शल महिनत अहम किरदार अदा कयो। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान चयो आहे त गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार गर्दी जे ख़ात्मे में पिण मदद

ईरान जंग जारी रखने की पोजीशन में ना है। अब्न हरमुज में जल्द घुर्जे वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चवाए त ईरान वट मुआदे का सवाए बो को गस न है। ईरानी सदर मसूद पक्षगान है त ईरान पैं मौके से न हटन जंग बदर गाल जरिए हक हासिल करण चाहन था।

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के शहर मका बाद मदीने पहुंची वो पाकिस्तानी वक्त से गड मस्जिद नबवी में हाजिरी भरी वे घुरी शहबाज रसूल वधन लगो गुड्डू बैराज से एक भेरो बीहर विचोली दर्जे वाली बोर्ड डिक्लेयर गुड्डू बैराज वट मथाओं वेख छठ हजार क्यूटली वेकरो एक लख उसी हजार टोटली बैराज जो हेठा वेकर
1: आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणू छटाई करण में आसान ने नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल।
2: आप सुन रहे हैं नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल वन पास
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारो डुगर खा भी जाठा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करोला।

0: आज भी सिर्फ ही है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आवाज अपना शहर अपना घर मठियारी मठियारी की आवाज
1: करंट प्रसंग रफ।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: मिट्टी जो माँ
4: पासे बलोचिस्तान में रदुल फितना टे दौरान कंबीला ए आसिमाबाद में ऑपरेशन टे दहशतगर्द मारजी वया केतरा ही थाक तबाह सदर आसिफ जरदारी पारा शहीद कैप्टन हमजा अकराम के भेटा पेश सदर चयो त कौम बहादुर पुटन जे कुर्बानी जी कर्जी आहे। पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया मां कें हिक ते हमलो टिनी मुल्कन ते समझो भी कन तारीखी मका गडियल दिफाई मुआहिदो करे छडियो। सऊदी अरब जे शहर मका मुकरम में टिनी मुल्कन जो सरबराह इजलास में मुआहिदे ते सहियूं कयूं वयूं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान मके दिफाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं। परडेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त मुआहिदे तहत टई मुल्क दिफाई सहकार खे हथी डींदा। मुआहिदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिनी मुल्कनि ते हमिलो तसवुर कयो वेंदो। मुआहिदे जो मक़सद टिनी मुल्कनि जे दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइण आहे। वज़ीर आज़म पारां मके में गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदो टिनि भाइर इस्लामी मुल्कनि विच में दोस्ती अमुन ऐं सलामती जे गडि॒यल अज़म जो इज़हार करार। शहबाज शरीफ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे अणथक महिनत इहो अज़ीम मक़सद पूरो करण में अहम किरदार अदा कयो। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान चयो आहे त गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो। गडि॒यल मनसूबनि खे हथी डि॒यण ऐं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे में पिण मदद मिलंदी। सऊदी परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान बि चयो आहे त सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो टिन्ही मुल्कनि जी तरक़ी ऐं खु़शहालीअ जो सबबु बणजंदो। मुआहिदे सां इलाक़ाई अमुन खे हथी मिलंदी। ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे। आबना हरमुज़ बि जल्द खुली वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान वटि मुआहिदे खां सवाइ ॿियो को गस नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ खां पोइते न हटंदो। जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करण चाहियूं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जे शहर मका बाद मदीने पहुची वियो। पाकिस्तानी वक़्त सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िर भरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज़ुल जना में नफ़िल पढ़ी मुल्क क़ौम ऐं उमत लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरियूं। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे सादत बि हासिल कई।

0: में कैप्टन हमजा शहीद थी वयो। बे पासे बलूचिस्तान मोहम्मद अली ओगाई वटां बीएस फीडर के सौ फुट जो घारो पयो। पाणी इलाके जे दाखिल थियण लगो। रहवासी परेशानियुनि जो शिकार। आपाशी खाते पारां घारो बंद करण जूं कोशिशूं जारी। ऐं मुल्क जे मथां इलाकनि में बरसात बाद सिंधु दरिया में पाणी बैराज ते हिकु भेरो वीहर विचोली दर्जे वारी बोट डिक्लेयर। गुडू बैराज वटि मथां वेकिरो 2,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। सखर बैराज वटि पाणी जी सतह में बि वाधि थियण लॻी। 1,69,000 क्यूसिक थी वियो। कोटली बैराज में बि पाणी वधण लॻो। मथां वेकिरो 1,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटली बैराज जो हेठां वेकिरो 1,42,000 क्यूसिक थी वियो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज। GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Inan havanta ma jaan goriya.
5: Hinan vitiya cha rangar.

0: ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहे न आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
4: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
5: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: हम एक खोखली औरत, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले तो वो पागल हो जाए।
1: मेरी मोहब्बत के काबिल है वो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6। It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।

हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आवाज़। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो करण में।

0: हक सच जो आवाज जीटीआरई एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
4: तबाह। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ए मोहसिन नकवी पारां शहीद कैप्टन हमजा अकरम के भेटा पेश। सदर चयो त कौम बहादुर पुटन जे कुर्बान जी करदी आहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकम्मल करण बाद वापस डे रवानो। वजीर आजम के मदीना जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। वजीर आजम डे रवानगी खां पहिरीं वफ्द सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जनाह में नफिल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई। पीपल्स पार्टी जिता हाराईंदी धांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे। कश्मीर जे शहर हवेली में चूंड जलसे खे ख़िताब बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे राणा सनाउल्ला चयो त आज़ाद कश्मीर जे मसइलनि खे हुकूमत खणण बाद तरजीह बुनियादनि ते हल कयो वेंदो। ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे। अब्न हरमुज़ बि जल्द घुर्जी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान वटि मुआहिदे खां सवाइ ॿियो को गस नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ सां पोइते न हटंदो। जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करणु चाहिनि था। पंजाब जे शहर लाहौर में बरसात बाद रोड रस्ता पाणी हेठि अंडर बाईपासिस बि बरसात पाणी सां भरिजी विया। शहर जे हेठनि वारनि इलाइक़नि में बि गोॾे जेॾो पाणी बीठल।

कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ कब्रकुशाई जो अमल जारी। डॉक्टर्स जी टीम कब्रिस्तान में मौजूद मरहूम जे जिस्म जा जुज़ा वठी वधीक जांच लाइ लेबोरेटरी मोकिलिया वेंदा। मीर रज़ा जा वारिस ऐं वकील बि कब्रिस्तान में मौजूद, हतमी रिपोर्ट बाद जारी कई वेंदी। सिंधु दरिया में चाढ़ बावजूद सूबे में पाणीअ जी खोट बरकरार। मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादगारनि जा पाणीअ खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। शादादकोट में सैफला मंगसी ब्रांच मां निकरंदड़ गंदा खारिज। राइट माइनर जे आबादगारनि जो सीढ़ियल बिजारो सड़ियल बिजारो खणी एहतजाज। सिंध बली रोड वारी

0: ऐं मुल्क जे मथां इलाइक़नि में बरसातनि बाद सिंधु दरिया में पाणी वधण लॻो। गुडू बैराज ते हिकु भेरो ॿीहर विचोले दर्जे वारी बोट डिक्लेयर बैराज वटि मथां वेकिरो 2,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। सखर बैराज वटि पाणी हिकु
1: साथ जिंदगी भर का।

हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे, हम कहां के सच्चे थे।

0: कैसा महसूस होगा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुला
6: मिट्टी जो सदर चयो तो कौम बहादुर पुटन जी कुर्बान जी कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकम्मल करण बाद वापसी लिए रवानो। वजीर आजम के मदीने के गवर्नर एयरपोर्ट से अलविदा कयो। वजीर आजम दे रवानगी का पहरी वफद सा गड मस्जिद नबवी में हाजिरी भरी ए रियाजुल जना में नफिल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोजा रसूल ते हाजिरी भरे ज्यारत की सादत भी हासिल कई। पीपल्स पार्टी वफाकी में सागी पघार ते कम कंदी रहंदे पीपल्स पार्टी जिता हराइंदी धांधली जो इल्ज़ाम लगाइंदी आहे। आजाद कश्मीर के शहर हवेली में चूंड जलसे के खिताब बाद मीडिया से गालाइंदे राणा सनाउला चयो त आजाद कश्मीर के मसलन के हुकूमत ठहण बाद तरजीह बुनियादन ते हल कयो वेंदो। ईरान जंग जारी रखने की पोजीशन

नाहे आबन हर्मुज भी जल्द खुली वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान वटि मुआहिदे खां सवाइ ॿियो को बस नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ तां पोइते न हटंदो, जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करणु चाहियूं था। पंजाब जे शहर लाहौर मां

0: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 96 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, मटियारी FM 91.6, सिंध जो दर्दा रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम, अब आपका फैन।
3: बात है।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। जी एफ एम 88 सिंध की आवाज़।

0: வந்து கோநகலந்து சாவுதே சோரா.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करने में आसान बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अगर तुम्हारा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो पाया या फिर तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहिए था तो तमाम बिल्कुल मेडिकेटेड फार्मूलो है निगरानी के अंदर तैयार करो वो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब तुम इस्तेमाल क्रीम एक नाइट क्रीम आए सो इनके तुम्हारा राज टाइम इस्तेमाल उनका अलावा आप ये सोच रहे हैं कि भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम लगाएंगे तो क्या हमारी ऑल स्किन टाइप के लिए हमारी स्किन तो सेंसिटिव है तो क्या हम लगा सकते हैं तो बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन इस तरह किया गया है इस तरह तैयार किया गया है कि आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं मेडिकेटेड फार्मूला तो आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर लगा सकते हैं और जनाब इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके एक बहुत ही मयारी ब्यूटी फार्मूला है ये आपके करता है चेहरे को नराजा रखने में भी मदद देता है और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा इस्तेमाल आपकी जल्द की जो है ना बेरोनकी कम कर देता है चेहरा ज्यादा साफ और रोशन नजर आना स्टार्ट हो जाता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब जितनी सारी चीजें हैं वो आप लोगों की स्किन को फ्रेश एहसास देने के लिए है और आपकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए है तो रोजाना इस्तेमाल आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरती में चमक फराहम करेगा तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम लगाइएगा सोने से पहले लगाने से पहले एक और चीज है जो आपने यूज करनी है वो है डी स्किन फेस वॉश बिल्कुल जनाब डी स्किन फेस वॉश को कैसे भूल सकते हैं तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और डी स्किन फेस वॉश की भी अगर बात आती है तो ये भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है अब आप ये बोलेंगे कि ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम क्या है तो ये इतना इम्पोर्टेंट सा चीज है इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इससे फायदा ये होता है आपकी स्किन को कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाती है आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है और आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहती है तो ये इतने सारे फायदे जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये कि आप नाम लेकर तलब कर सकते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए वहां से नाम लीजिए और ये जो आप बोलते हैं ना डी एस नहीं बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी आप लगाइए और साथ में आप स्किन को याद रखिए कि हाँ जी आपकी स्किन तो बिल्कुल वैसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स

अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके पास नंबर्स मौजूद होने चाहिए, जिन नंबर्स के ऊपर आप राबता कर सकें इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए। कोई मालूमात लेना चाहते हैं वो हासिल करने के लिए तो आपने डायल करना है 03-12-50-25-907। और इसके अलावा अगर दूसरा नंबर आप डायल करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर है 03-273-84309-03-32-73-84309। अब ऐसा है कि मैं अभी मुझे ये ख्याल आया जब आपको मैंने नंबर बताया तो महर इरफान सियाल साहब तो वापस आ चुके उमरा से, तो मैं सोच रही थी कि उनका नंबर दोबारा से अनाउंस कर ये पूछना पड़ेगा मुझे। तो अभी तो आप ये नंबर जो है वो डायल कीजिए और उसके साथ साथ मुझे जरा ये बताइए, आज जो हमने एक थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया है आप लोगों से, जिसका आप लोग मुझे जवाब देने वाले हैं, कि कुछ लोगों के खानदान में ना ये चीज होती है कि वो अपने खानदान से बाहर शादियां नहीं करते, समझ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, आप लोगों ने भाई आपको ये ऑप्शन दिया गया कि आप खानदान के अंदर शादी कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, आप पुप्पो का घर सिलेक्ट करेंगे या मामू का घर सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों ऑप्शन में बताइए जरा बेस्ट क्या है, किसको ज्यादा वोट मिल रहा है वो मैं देखूंगी। और ये हमारी एक लिसनर है, उनके तरफ से ये टॉपिक मुझे सजेस्ट हुआ है तो उन्होंने जानना है कि भाई लिसनर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, और बाबा शादी शौक जी खर्च करना खाना रोके मुंह असानी फैमिली मेरे को सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह। तू समझा, ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जरा।

ओके जी, हमारे साथ ही यहाँ पर हैप्पी की थी आरजे। अच्छा लिखते हैं, आई थिंक मामू का घर बेहतर है और पर पप्पू का घर भी कम नहीं, और वो भी अच्छी है। ये टॉपिक आंसर यानी आपने तो फिर मामू को सिलेक्ट किया ना, फिर ठीक है, इसको हम जरा लॉक कर देते हैं। ओके जी, हमारी निदड़ी हमारे साथ मौजूद, कहती है हेलो स्वीटी, वेलकम टू शो, हेलो टू यू प्यारी। और उनका अलावा सादिया तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे, मां कोशिश कयां थी तव्हांजो गानो हलाईंदासीं। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, विलेट सोनो खां लाशारी मिरपुर खां से कहते हैं सुन रहे हैं बाजी सिदरा, वेलकम, आपको भी वेलकम कहा जाता है।

ओके थी एस एन आर बाणी क्या कहते हैं सलाम अलैकुम सलामत ओ माय फेवरेट आरजे बेटा मुस्कान कैसी हैं माँ सवा ठीक कहाँ बुधा की आयो मजे में अखलाक भाई कहते हैं अंसर मामा मामी जिंदाबाद ओ जियो करे से किशोर भाई आ चुके हैं सलामत दास स्मार्ट हाजरा कैसा आयो खुश आयो सब मस्त मजे में तो मैं कह मुझे ओके जी स्मार्टो गोपां कहते हैं टॉपिक आंसर मेरे ख्याल में शादी के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि रिश्ता बुफों के घर में है या मामों के घर में शादी जिंदगी का एक अहम फैसला है इसलिए रिश्तेदारी से ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला इंसान समझदार नेक जिम्मेदार और हमारे खानदान के लिए मुनासिब हो रिश्ता कहीं से भी हो सकता है लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए यही मेरी नजर में एक समझदार फैसला है समझदारी वाला फैसला है ओके और मैंने एक चीज नोटिस करी है चाहे हमारे जो बुजुर्ग है ना हमारे जो घर के बड़े हैं ना उन्होंने अपने खानदान में रिश्ते कराकर कितनी ही तल्ख चीजें मतलब जो है ना वो देख ली हैं हासिल कर ली अपने बच्चों को तकलीफें दे दी हैं लेकिन फिर भी उनका ये एक मानना होता है कि भाई शादी करनी है तो अपनों में करनी है हाँ जी पहले जो सबक सीखे वो कम नहीं थे आगे भी करनी है अपनों में करनी है ये चीज मुझे लगता है कि हर किसी के खानदान के अंदर पाई जाती है ऐसा है कि आज का जमाना जैसे आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों में ये चीज अवेयरनेस जो है ना वो आ चुकी है लेकिन अभी कुछ लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं जो कि इस चीज को बहुत अच्छा मानते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब हो तो हो लेकिन शादी अपनों में करनी चाहिए कीजिए भाई कीजिए और इसके अलावा आप पोस्ट को लाइक और शेयर भी कीजिएगा जी डीसेंट ब्यूटी क्रीम लगाने खां भी रोकियो न मुखे

0: वाह साई वाह, वाह साई वाह, भलो गानो एंजॉय कयो पया। और चाचा खालिद कहते हैं दोनों घर सही नहीं है, बाहर करें शादी, मैंने अपनी बेटी और दोनों अब बेटों की शादी बाहर की है, अपनों में तजुर्बा नाकाम रहा बेटा से जो हाणे सुतल सूर नजर आए नी यो टॉपिक पेरा अगर यो मतलब आए तय थियल तो पे जो असके टेस्ट करो वो पांच में करणो है वो भलो सबक हासिल कदासी पो बाहर वेंदासी ऐं सुठो अगर ईअं हुजे त तव्हां स्टार्टिंग में ई जेको आहे न सुठो कोई फ़ैसिलो वठो ऐं तव्हांखे इहा चीज़ ख़बर हुजणु घुर्जे त बाबा शादी जे लाइ जेको इंसान सुठो हुजणु घुर्जे उहो पंहिंजनि मां आहे या फिर किथां ॿाहिरि आहे इन चीज़ मां तव्हांखे फ़र्क़ु न पवणु घुर्जे। खैर असांजी ॻाल्हियुनि खे त इहो चयो वेंदो आहे बाबा ॿार आयो न तव्हांखे कहिड़ी ख़बर इहे वॾनि जा फ़ैसिला वॾनि ते छॾे ॾियो बिल्कुल जी तव्हांजा फ़ैसिला तव्हां ते छॾे ॾिनासीं इन खां अलावा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो इहा त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि मञी सघो था न सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन फेस वॉश आहे जेको तव्हां इस्तेमाल कंदा ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती खे सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते वठी वेंदा। ये जब भी मैं कोई शादी वाला टॉपिक रखती हूँ ना तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि गाने भी शादी वाले होने चाहिए।
1: So, देखे शादी जो इंतजार जो आप करार ओहो हथ

0: ओके हजार खान जतोई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह गुड शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। निगड़ी कहते हैं कि हम दोनों जवाब सुनेंगे बस। हाँ जी ठीक है, अच्छा मस्त आइडिया है। और उनका अलावा हमारे साथ ही सादिया कहती हैं टॉपिक ये अपनी अपनी पसंद की बात है। हाँ जय मुदा ऐसा कहते हैं टॉपिक आहिंद भाई सही कौन परवरी भी असा मामू जी घर के सिलेक्ट करना सी। ओह पप्पो को देखे अभी तक वोट नहीं मिला एक भी नहीं। ये बहुत बुरा है।
1: मस्त मौज मचे थी मटन सा मस्त मौज मचे।
0: ओके जी अब्दुल गफार भाई हमारे साथ खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाई को। और हाले सुल्तान हमारे साथ हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ आप बताएं हाले सुल्तान आप कैसी हैं? कहते हैं हेलो सिद्रा वो सॉन्ग भी मजे के होते हैं जो समझ नहीं आते अभी आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। समझ नहीं आ रहा बट मजे का है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हाले सुल्तान का नाम देकर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कोई ड्रामा है जैसे आजकल के नामों के एड नहीं आते। देखिए आज रात 8 बजे हाले सुल्तान बिल्कुल वैसे ही।

ना बाबा अला बना दे पुफिन का असा पेरिया ये जके न सत्यल आयो इनन जा सो खैर इन गाल के थोड़ो डिस्क्लोज अच्छा मैं जो है ना एक बार

सोच रही थी कि आप लोग जो है ना इस टॉपिक के ऊपर जवाब दें तो जरा सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो लाजमी है कि आप जो है ना नंबर आपको बता रही हूँ उनके ऊपर रब्ता किया जाए। तो बिल्कुल नंबर्स के ऊपर रब्ता करिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराइए और जनाब इस्तेमाल करते जाए, क्योंकि खूबसूरती यहीं से स्टार्ट होगी कि आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज करना शुरू करें। और पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें मेरे बिना कहे। क्यों इतना कहलवाते हैं।

अच्छा सुफियान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम सुफियान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। दादा खालिद कहते हैं डी स्किन क्रीम वालों का लोशन अवेलेबल, डी स्किन का नहीं लेकिन वाइट इतना कहलवाते हैं।

अच्छा सुफियान अहमद हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम सुफियान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। दादा खालिद कहते हैं डी स्किन क्रीम वालों का लोशन अवेलेबल, डी स्किन का नहीं लेकिन व्हाइट एज का लोशन मौजूद है, वो व्हाइट एज का लोशन ले सकते हैं।

स्मार्ट हो गोपाल जैसी कोई बात नहीं है। किशोर भाई वो यही हमारे आसपास हैं, बस ढूंढिए आप खुद, मैं नहीं बताऊंगी।

अच्छा ये तो आप चाचा कह रहे ना कि उसको बोलें कि दोनों जगह मना कर दे, अब उनके खानदान में ये चीज है कि भाई आपने खानदान में ही शादी करनी है, तो उसको दो बस ये ऑप्शन मिल गए कि या तो पप्पो के घर हाँ कर दे या तो मामू के घर हाँ कर दे, तो बेचारी बड़ा फंस गई है वैसे ये थोड़ी अजीब सी बात कह भी क्या सकते हैं। अच्छा हैप्पी कहती है आरजी अगर कोई किसी को पसंद करेगा तो वो ये चूज नहीं करेगा किसी का है, और ये दे सोच पे अब समझ गई तो फिर उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं ना, तो फिर इन दोनों में से किसी को चूज करना पड़ेगा।

0: आपको वेलकम कहा समझ गई। और दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, चलता जाने को कुछ ठाले, आप बताएं स्वीटी कैसी है। ओके, दर्द दिल कहती है आज मैं जनाब, क्या बात है, बिल्कुल जी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अच्छा ये ना एक चीज है भाई, सदियों से ये चीज चलती आ रही है, हमें लग रहा है कि हम जो है ना, यानी कि हम जब बुजुर्ग बनेंगे तो इस रिवाज को, रस्म को जरा साइड पे रखेंगे, वरना जो हमारे बुजुर्ग है ना उनके लिए भी सबसे पहला ऑप्शन जो है ना वो पांजा है, पांजा एक जी कहावत आए बाबा तो पांजा की चवंदा पांजा मारे शाम में छलींदा अलाए की मतलब ये कहावत बुधी आने जरा मतलब सही कर या कहावत की है। माहे ते वठानी जनाब न्यूज ब्रेक, उन खापो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे सरी ने मंजो ते स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी, और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
4: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
6: brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
8: वधे। मसूद पज़िशान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ तां पोइते न हटंदो। पंजाब के शहर लाहौर में बरसात बाद रोड रस्ता पानी हेठ, अंडर पासिस भी बरसात पानी से भरजी वया, शहर के हेठान वारन इलाकन में भी गोडे जेडो पानी बीठल। कराची के नौजवान मीर रजा के मौत जो शाही मड़ जा जुजावर रजा जा वारिस

मक़तूल औरत जे वालिद जमाल लगारी चयो आहे त कुझु वक़्त पहिरियां वसीम धीअ खे अगवा करे वियो हो। पाक किताब ते धीअ वापसि ॾिनी वई। अॼु सुबुह वसीम अबड़ो हथियारबंद माण्हुनि सां गॾिजी घर अंदरि दाख़िल थी धीअ खे पिस्टल जा फायर करे क़तल कयो आहे। पुलिस इतलाउ बावजूद कार्रवाई नाहे कई। इंसाफ़ कयो वञे। 88 मोरीअ मां मुबैन ज़ुल्मनि खां घरां निकतल ॿ भेनर अदालत में पेश। अदालत ॿिन्ही छोकिरियुनि जो बयान रिकॉर्ड करण बाद खेनि माइट उस्ताद लियाकत बिरोही हवाले करे छॾियो। ॿिन्ही भेनरनि अदालत में बयान ॾींदे चयो त पीउ जे ज़ुल्मनि खां तंग थी माइटनि वटि पनाह वरिती आहे, तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। हैदराबाद जे फुलेली चौक ते मदीना कॉलोनी वासी औरतुनि जो बिजलीअ जी बंदिश खिलाफ़ एहतजाज। रुकावटूं रखी रोड खे बंद करे छॾियो। औरतुनि मूजिब हफ़्ते खां ख़राब थियल ट्रांसफार्मर तब्दील न पियो कयो वञे। बिजली न हुजण सबबि सख़्त परेशान आहियूं। ट्रांसफार्मर तब्दील करे बिजली बहाल कई वञे। ॻोठाणनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। ॻोठ करम खान दालवाणीअ में ॿिन महीननि खां वाटर सप्लाई बंदि हुजण ख़िलाफ़ रहवासी रोडनि ते निकिरी आया। ॻोठाणनि औरतुनि समेत हैदराबाद रोड ते टायर साड़े धरणो हयो। रहवासियुनि जो चवणु आहे त ॿिन महीननि खां ॻोठ करम खान दालवाणीअ में वाटर सप्लाई जो पाणी बंदि आहे। गंबट में ज़राइत खाते जे आफ़ीसर जो घर मां लाश मिलण जो केस दाख़िल। ज़राइत खाते जे आफ़ीसर ज़ाहिद भट्टी जो क़तल केस संदसि पुटु आसिफ भट्टीअ जी फरियाद ते दाख़िल कयो वियो। केस में मक़तूल जी ज़ाल लतीफ़ा, मुलाज़िम दानिश शेख, संदसि ज़ाल लैनी राशिद ऐं मलम शेख नामज़द। फरियादी जो चवणु आहे त मक़तूल जी ज़ाल लतीफ़ा शेख मिल्कियत जे मामले ते मुड़ुस सां नाराज़ रहंदी हुई। वालिद 4 अगस्त ते गुम थियो। वेगी माउ खां पुछंदो रहियसि पर तसली बख़्श जवाब न मिलियो।

0: 12:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.1।
4: वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो हमने पहले आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश के बारे में बताया। तो फिलहाल आप लोगों को बताया जाएगा वाइट एश, हमें ज्वाइन किया, हमको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों, चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

छोकिरी ऐसा कहते हैं कि वडन के छा कजे बाबा मुंह तो असा के देनो पंदो हा कि हा हकीकत आ वैसे पोवरी चोंदा बाबा नसीब तस नसीब तस बच्चा दे जाने अब्दुल गफार हमारे साथ अब्दुल गफार केसर भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको खुश आमदीद के साथ साथ नजर की थी ओहो कौन सी चैनल पर ये ड्रामा आता है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ ही इंसान ओके सुफियान भाई हमारे साथ उनकी शादी हो चुकी ना ये गाना उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है आप खुश मत हो वधी गाना हाँ बस क्यों बस वाइटिश अरे स्मार्टो को पान कहते हैं कोई भी शाम में रखना है ने ना तो मार नहीं छुआ और दिया परी हमारी कहती अस्सलाम मैं आपकी साइलेंसी को तोड़ मरी सारती है सॉरी आपका ऐसे स्वागत कहा जाता है बहुत अच्छा लगता है लोग हमारे प्रोग्राम और कहते हैं हे असा तक बुध ना आयो पर शामिल न थी ना आयो बुधवाइन बाबा और जी आदिल तुम्हें जवाब दिनो आए ओ हिडू वडू जवाब दिनो धवला गसी करे कहते हैं क्या लड़की की शख्सियत सबसे और इखलाक माँ पड़ताल रखता है पहले से रस्म और रिवाज सोच का अंदाजा है रिश्तेदार का प्रेम पुप्पो के घर नया खानदान वहाँ उनके उसूल मिलते हैं तो कोई मसला नहीं कि घर का नाम लोग दिलाकर रिश्ता करो चाहे वो मामू हो या पुप्पो हो।

0: बिली ने कहा है मतलब पप्पू को कोई वोट नहीं दे रहा अभी तक तो नहीं। अच्छा दिया पढ़ी कहती है मेरे लिए सॉन्ग प्ले कर रही मास्टर मजदूर का डेडिकेट अली मुर्तजा अंसारी। क्या बात है, अली मुर्तजा अंसारी नजर नहीं आ रहे, वैसे वो कहाँ गायब है।
1: मेरी आहों का तेरे दिल पे असर को,
0: एक बहुत अच्छा मास्टर मजदूर का।
1: मेरी आहों का तेरे दिल पे असर कोई नहीं।
0: वैसे दिया आप तो जानती हैं, आप हमारा प्रोग्राम सुनती हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बताइए जरा व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस्तेमाल कर रही हैं या फिर अभी सोच रही हैं।

बिल्कुल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से

0: आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में, एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम,
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कहती हैं मम्मी, मैं मनोज हूँ कि जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: देखिए मोहलत।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से। आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी, प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें हमें आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

बुआ हल्लड़े हिकली बुआ खुशियां। अच्छा ये हमारे साथ साइमा बीहर तमाजो मैसेज आ दिल तू चवे सिदरा आई निदड़ी भी डिविजन सलाम बीमार न उदास निदड़ी के आई बिल्कुल अरीबा हमारे रम ने भी अपने को जबरदस्त

ओकेजल भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है और नजीबुल्ला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको, कहती है चंदा तुम्हारी दोस्त के साथ ये सीन है आगे कहीं अल्लाह ना करे इस पर सही नहीं चल रहा आपका शो, आवाज कम आ रही, मेरे खास वालों सही चलाया कर उनका अलावा प्रीतो भाई हाँ नहीं कर रही ना, वो बहुत जिद्दी है। अच्छा स्वीटी आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। चाचा खालिद कहती आज का शो बहुत अच्छा था, थैंक यू चाचा। सादिया बहुत शुक्रिया आपका। सुमाटो गोपांग आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। निदली कहती पप्पो को बस एक ही वोट मिला है, हाँ ना अब आप देख

हा भाई तव्हां सभिनी त मामो मामो सिलेक्ट कयो, सायमा चयो त बाबा छो पुफो वीचारी खे हिकिड़ो बि वोट न मिलियो, सायमा मीर जेको आहे न पुफो खे वोट ॾेई छॾियो हिकिड़ो पर दम त आहे ओके जी। और हे वासु भाई हमारे साथ लास्ट में आए हैं, वेलकम करते हैं वासु भाई आपको भी। और दिया क्या कहती हैं, आपका नाम आपके वालदे ने सही रखा है सिद्रा मुस्कान, आपकी मुस्कान हमेशा यूं ही कायम रहे, आमीन। थैंक यू सो मच दिया, बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे लोग प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कॉमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा ऐसे मुस्कुराता रखे, याद रहे, आबाद रहे और हमारे साथ रहे। अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से, थैंक यू। न मूंखे लॻे नथो तव्हां नाराज़ आहियो, पर मां चाहियां थी की तव्हां नाराज़ थियो बि न, बसि तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा रहो ऐं सुहिणा सुहिणा थींदा रहो। इजाज़त वठूं था वरी छॾ, तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी थिए पई 5 बजे वारे, हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा, किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था, जंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो आहे, गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी सो मोकिलाणी न आहे। बाबू सन सलामत, सा सलामत, हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yuya Granular. Mitti jo manwa.
4: Ab aap sunenge GAFM Network पर KTN News
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर
7: सिन नकवी पारां शहीद कैप्टन हमजा अकराम के भेटा पेश कई। सदर चयो त कौम बहादुर पुटन जे कुर्बानियुनि जी कर्ज़ी आहे। शहबाज शरीफ चयो त कौम शहीदन ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे। दहशतगर्दन खे ख़तम कयो वेंदो। ईरान जंग जारी रखण जी पोजीशन में नाहे। अबना हरमुज भी जल्द खुली वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान वट मुआहिदे खां सवाइ बियो को गस नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़दीशान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ तां पोइ ते न हटंदो। जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करण चाहियूं था। कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो

कारण मालूम करण लाइ कब्र कुशाई मढ़ जा जुज़ा वरिता विया। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त मेडिकल बोर्ड जी जोड़ जक मां मुतमिन आहियूं। वकील जिब्रान नासिर चयो त मामले में असांजी ॻाल्हि ॿुधी वई आहे। उमीद आहे त शाम 6 वॻे ताईं समूरनि सवालनि जा जवाब मिली वेंदा। खानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 3 ॿार फोत, 7 बेहोश। गुलज़ार कुरेशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 10 भाती बेहोश थिया। इलाज दौरान 5 वरनि जो ज़ैन कुरेशी ऐं 3 साल दिलावर महानूर

जी हड़ताल ट्रांसपोर्टर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो चवण है हड़ताल सबब थींदड़ नुकसान की जिम्मेवार वफाक सूबाई हुकूमतू हूंदियूं गालिन जा दर बंद नाहन कया मसला हल न थिया त धरणो हयो वेंदो। सिंधु दरिया में चाहण बावजूद सूबे में पाणीअ जी खोट बरकरार मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादगारनि जा पाणीअ कोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा शादात कोट में सैफला मंगसी ब्रांच मां निकरंदड़ गंदा राइट माइनर जे आबादगारनि जो सड़ियल बेजारो खणी एहतजाज जे जमाली रोड वारी पुल ते धरणो फसल मालगो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।